0: डैड।
1: राहुल कैसा है बेटा? एवरीथिंग फाइन?
0: एवरीथिंग फाइन डैड। इनफैक्ट बहुत खुश हूँ मैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम।
1: हे आर यू इन लव?
2: तू ही मुझको बता दे।
0: हाउ डू यू नो?
1: मेरा बाप साले। When the son is in love, the father just knows.

0: जैसे तेरा।
1: जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ हिन्दी रिमिक्स गीतहरू रेडियो काठमाडौँ 92.1 मेगाहर्ज को नन स्टप हिन्दी रिमिक्स गीतहरूको साथमा
1: ओम हॉस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर।
2: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ।

0: सस्तो, टिकाउ अनि आकर्षक यूपीवीसी झ्याल ढोकाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। क्षमा देवी बिल्डिङ मटेरियल्स प्राइभेट लिमिटेड, मुख्य कार्यालय कौशलटार भक्तपुर, शाखा कार्यालय कलंकी ढुङ्गे अड्डा पिपल बुटचोक काठमाडौँ।
1: पावर ब्रॉडकास्टिंग, कीप लिसनिंग।

0: राष्ट्रिय ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेन्स ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि।
1: घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ। बर्जर पेन्स

0: Radio Kathmandu 92.1 Studio Time
1: 9 PM
2: Powered by
3: तपाईको जीवनमा रंग भर्दै चीजका अप्लायन्सेसहरु 100% कपर वायर प्रयोग गरिए केबल तथा सम्पूर्ण पार पुर्जाहरु ISI प्रमाणित 3 वर्षको वारेन्टी युक्त
4: चेज मिक्सर ग्राइंडर ओम हॉस्पिटल वी केयर फॉर यू
5: प्रविधि पूर्वाधार र दक्ष चिकित्सक एकै छाना मुनि
6: निजी क्षेत्रको अग्रणी अस्पताल
5: ओम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चावेल काठमाडौँ
7: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक

0: Home Hospital, we care for you.
1: प्रविधि पूर्वाधार र दक्ष चिकित्सक एकै छानामुनि
0: निजी क्षेत्रको अग्रणी अस्पताल
1: ओम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चावेल काठमाडौँ।

0: सस्तो, टिकाउ अनि आकर्षक यूपीवीसी झ्याल ढोकाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। क्षमा देवी बिल्डिङ मटेरियल्स प्राइभेट लिमिटेड, मुख्य कार्यालय कौशलटार भक्तपुर, शाखा कार्यालय कलमकी ढुङ्गे अड्डा पिपल बोर्ड चोक काठमाडौँ।
1: पावर ब्रॉडकास्टिंग, कीप लिसनिंग।